अच्छा आज करे तो कल कर, कल करे तो परसों, जल्दी जल्दी क्या करना है? तुम्हारे लिए

0: अपने से किसी या रोड स्लीपर लगता है। छोटी तो नहीं है पता बोल रही हूँ
1: Staff on the Mandurah Narragup channel having a conversation. Check your radios, Mandurah Narragup. Check your partner's radio. You're transmitting a conversation to somebody.
0: Stop it, stop it, stop it.